नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन कार्यक्रम पुष्पाञ्जलिमा। म प्रस्तोता युवेन्द्र। अबको करिब करिब एक घण्टा म यहाँसँग आज मंगलबार गणपति गणाधिपति श्री गणेशिका भजनका साथसाथै सुमधुर भजन लिएर रहनेछु। कार्यक्रमको प्रारम्भमा यो गणपति वन्दना।

कार्यक्रम भजन दीपाञ्जलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

सूत्र समझदारी को सेतु एफएम अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चाँदी का एक्सक्लुसिव गहना लगायत भाँडाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चाँदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: कार्यक्रम सर्व मंगलम। यस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का उत्कृष्ट

रामायण के सुंदरकांड के ये मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी प्रसंग भजनों द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूँ। रावण जब सीता माँ को धोखे से हरकर अशोक वाटिका में कैद कर लेता है, पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हनुमान जी पता लगाते लगाते अशोक वाटिका में पहुँचते हैं और पेड़ के ऊपर छोटा सा रूप बनाकर बैठ जाते हैं। नीचे देखते हैं कि रावण सीता माँ को बहुत डरा रहा है, धमका रहा है। जब रावण डराकर धमकाकर चला गया तो हनुमान जी पेड़ से नीचे कूदते हैं और सीता माँ को अपना परिचय देते हैं। लेकिन सीता माँ घबरा उठती है, बानर के रूप में देख करके मन में सोचती है जरूर ये कोई रावण की चाल है। मुख पर आंचल डाल लेती है, अपना मुंह फेर लेती है। हनुमान जी से ऐसे ऐसे सवाल करती है कि हनुमान जी का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माता आप मेरा विश्वास करो, भरोसा करो, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। जब भरोसे की बात आती है तो सीता माँ हनुमान जी से कुछ ऐसी बात कहती है कि हनुमान जी का कलेजा छलनी छलनी हो जाता है।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर
2: रेडी मीडिया शूटिंग शर्टेड मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: मैं और मेरी तनहाई।
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: cette personne.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों अरे मदगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जनरल सिंह ओए जनरल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: Kaiku, kaiku, kaiku परेला।
1: वाह वस्ताद, वाह भाई, क्या शेर मारा है। वाह वाह वा, वा, वा, वा।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव।
1: One oh four eight.

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

0: சமையல் சுற்றுப்பாடு.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन गर्न अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ.

हीरो की सी ये हवा और सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स विशाल बजार पसल नंबर 13 न्यू रोड काठमांडू राधा कृष्ण ज्वेलर्स रोजाई मेरो सधैँभरि
1: FM AJ 104.8 megahertz.

आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें। बहनों और भाइयों, दिल को जज्बात की बुलंदियों तक ले जाने वाले सुरों और शब्दों की शहदाइयों, आज आपका संगीत साथी अमीन सायानी झुककर बड़े अदब से पेश कर रहा है फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड के दो बहुत ही महान बड़े बेमिसाल संगीतकारों के करीब करीब आखिरी गुलदस्तों की खुशबू बसी हुई है। फिल्म संगीत के साल सन 1973 के ये दो वॉल्यूम्स औरों के साथ साथ जिन दो अमर म्यूजिक डायरेक्टर्स को सलामी देंगे उनमें से पहले का नाम जरा दिल पर हाथ रख कर सुनिए, दादा सचिन देव बर्मन, जो बस 1973 के दो साल बाद 1975 में चल बसे।

0: 1973 की छांव में बसे हुए इस खूबसूरत गीत के जरिए दादा बर्मन के चले जाने के गम का इजहार यहां लता मंगेशकर की आवाज ने किया, और उस गोल्डन पीरियड के दूसरे सुरीले शहनशाह को भी लता जी ही याद करेंगी, सिर्फ गाकर नहीं बल्कि बोलकर भी। सुनिए।
1: पहले गजल गाने का एक खास रंग हुआ करता था, गिनी चुनी तर्जे हुआ करती थी। मदन भैया ने अलग अलग रंग के गजल गाने वालों को सुना और जब खुद गजलों की तर्जे बनाना शुरू की तो उनमें अपना एक नया रंग भर दिया। फिल्मों के लिए गजलों की तर्जें कैसे बनाई जाती हैं, उन्हें कितने रूपों में पेश किया जा सकता है, ये मदन भैया हम सबको बता गए।

सन 1973 के बाद मदन मोहन की तर्जें भी कम ही आईं, हालांकि देहांत उनका भी 1975 ही में हुआ दादा बरवंत की तरह। फिल्म संगीत के एक और बड़े सुतून बल्कि महान सुरीले जोड़े शंकर जय किशन की धूम तो 1973 के आते आते ही ढल चुकी थी, जिसके तीन खास कारण थे। एक तो उनके ग्रुप का पहला हादसा यानी शैलेंद्र का देहांत काफी पहले 1966 में, दूसरे 1971 में जय किशन की मौत, और तीसरे उनके लाजवाब संगीत से सजी हुई शानदार फिल्म मेरा नाम जोकर का फेल हो जाना, जिसने आर के फिल्म्स के मशहूर इदारे को कुछ बरसों के लिए हिला कर रख दिया था। लेकिन इन सारी दुर्घटनाओं के बीच सुनहरे दौर के फिल्म संगीत का झंडा लहराए रखने में तीन बेमिसाल संगीतकार आगे बढ़े हुए थे, और तीनों न सिर्फ बड़ी जोरदार बल्कि बड़ी कामयाब तर्जें देते रहे, और इन्हीं तीन के संगीत से सजी हुई 1973-1973 की नीचे वाली सालाना पायदानों की झलकें अब होती हैं शुरू।

ये था उस साल की वार्षिक संगीत श्रेणी की 36वीं पायदान पर फिल्म अनामिका का गीत। संगीत था छोटे नवाब राहुल देव बर्मन का। हां, 35वीं पायदान पर गीत था उस लाजवाब संगीतकार का जिनके सुंदर सुर बहुत ही कम फिल्मों में सजे थे, इसीलिए यही गीत मैंने गीतमाला की छाओ में के पिछले वॉल्यूम में छाओ के गीत के रूप में पूरा पूरा सुनाया था आपको। यहां तो आप सिर्फ झलक ही सुनेंगे। फिल्म थी मिलाप और वो म्यूजिक डायरेक्टर थे ब्रिज भूषण, जो एक बड़े खूबसूरत आवाज वाले मशहूर ब्रॉडकास्टर भी हैं। बहरहाल अभी तो उनकी उस हिट धुन की झलक सुनिए।

0: आइए फिर एक बार गीत बाला की छाव में।
1: और 1973 की पायदान नंबर 34 पर शोर मचाया था गोल्डन पीरियड के आखिरी दौर के एक और नौजवान अलंबरदार जोड़े ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम भी था शोर।

अच्छा, लोकप्रियता की रेस में उस साल 33वें नंबर पर दौड़ा उस जमाने के संगीतकारों का एक और शानदार जोड़ा, दो भाई कल्याण जी और

फिल्म जंजीर के इस गीत की झलक के बाद अब बहनों और भाइयों उस साल के पायदान नंबर 32 की झलक सुनाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये उस फिल्म कंपनी का गीत था जिसने पूरे 25 साल के बाद पहली बार अपने संगीत का लाजवाब ग्रुप बदल दिया था। जी हां, आर के फिल्म्स ने नए संगीत का जोड़े लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना शंकर जयकिशन की जगह और शैलेंद्र और हसरत की जगह ले ली मशहूर गीतकार आनंद बख्शी और शब्दों के नए खिलाड़ी विठ्ठल भाई पटेल ने, और इन सब ने मिलकर राज कपूर की नई करवट यानी नए नौजवान हीरो हीरोइन की फिल्म बॉबी में चार चांद लगा दिए।

0: मेरे दोस्तों बहुत जम के बैठ जाइए और पूरा ध्यान देकर सुनिए। आज मेरे रिकॉर्डिस्ट के वर्गीज जॉन ने मेरी लाइब्रेरी से एक ऐसा पुराना इंटरव्यू ढूंढ निकाला है जिसके बारे में मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। यह है महान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सुपरस्टार राज कपूर का इंटरव्यू। इसे मेरी यूनिटी में तैयार किए गए एक प्रोग्राम के लिए मशहूर कॉमेडियन महमूद ने लिया था। उस इंटरव्यू में राज कपूर साहब ने बॉबी के हीरो यानी अपने बेटे ऋषि कपूर के बारे में भी बताया था, मगर वो हिस्सा आप अगले वॉल्यूम में सुनेंगे। आज सुनिए राज कपूर की कुछ प्यारी बातें बॉबी की हीरोइन डिंपल कापड़िया के बारे में। इंटरव्यू के शुरू में महमूद भाई ने राज साहब से पूछा था,
1: बॉबी के रोल के लिए डिंपल कापड़िया कहाँ आपने देखा और कैसे उनको आपने फिक्स किया उस रोल के लिए?
2: यूं ही एक दिन घर में कृष्णा जी ने उनको किसी ने कहा कि एक लड़की है, उसे क्यों नहीं आप देखते?
1: एक सेकंड, कृष्णा जी मतलब मेरी भाभी? हाँ। मतलब मिसेस राज कपूर?
2: हाँ बिल्कुल ठीक है, मेरी भाभी नहीं, मेरी नहीं तुम्हारी भाभी। तो मेरा ख्याल है घर की बात से उन्होंने हमसे जिक्र किया कि आप एक लड़की है, तो उस दिन हमारी 25वीं सालगिरह शादी की थी और उस दावत में एक लड़की सफेद गरारा कमीज पहने हुए, मेरा ख्याल है डिंपल तब 14.5 या 15 बरस की लड़की थी, तो वो वही इधर से उधर उधर से इधर बच्चों में घूमे फिरे आए जाए, हमें कुछ अदा सी तो भाग गई, रात का वक्त था तो यूं ही मुस्काते मुस्काते इधर उधर आती जाती थी, तो वहीं से शुरुआत हुआ। फिर उन्हें बुलवाया गया, उनकी तस्वीरें ली, ट्रेनिंग, इसमें साल निकल गया और फिर जाके ऐसा ही महसूस हुआ कि हाँ बॉबी मिल गई।
0: और बहनों और भाइयों, बॉबी की रिलीज से कुछ ही अरसा पहले डिंपल की शादी जिनसे हुई थी ना, उनका उसी के सिलसिले में इंटरव्यू भी आज आने वाला है, इंतजार कीजिए। अच्छा भाई, अब करवट बदलकर फिर लौटिए 1973 की गीतमाला की छाव में, मगर हाँ जरा सहम कर लौटिए क्योंकि इस छाव में अब एक ऐसा ऐतिहासिक गीत आएगा जो ओपी नैयर के संगीत में ढले हुए बेहतरीन गीतों में गिना जाता है, मगर वो गीत लोकप्रियता की दौड़ में, पॉपुलैरिटी की रेस में शामिल हो ही नहीं पाया क्योंकि इसे फिल्म से ही हटा दिया गया था। क्यों, ये तो भाई किसी को ठीक से नहीं मालूम, शायद इसमें संगीतकार और गायिका के बीच के तनाव की ऐसी हकीकत छुपी हुई थी जिसे दबा देना ही ठीक समझा गया, मगर भाई तीर तो कमान से निकल ही चुका था क्योंकि गीत रिकॉर्ड पर आ ही चुका था, इसलिए उसका गीतमाला की छाव में बजना तो भाई लाजिम।

और अब बहनों और भाइयों, फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के इस अमर गीत के दर्द को मिटाने के लिए एक प्यार का तोहफा छांव से उभर कर आपके पास चला आ रहा है। कबूल कीजिए और इसके जन्मदाताओं के नाम इस पैक के कवर पर देखिए।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। अच्छा, अब आने वाला है उस साल की छाव का एक बड़ा प्यारा चुलबुला सा गीत। इसे भी लोकप्रियता की धूप नसीब नहीं हुई। हालांकि फिल्म में जज्बाती अदाकारा नूतन के साथ नए नए चढ़ते हुए सूरज यानी अमिताभ बच्चन भी थे और नटखट सेक्सी पद्मा खन्ना भी।

फिल्म का नाम तो आपको याद ही होगा, यहाँ सौदागर। मगर ये भी याद है कि संगीतकार कौन थे? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कामयाबी की पायदानों पर चढ़ने की जोरदार तैयारी करने वाले रविंद्र जैन। खैर बहनों और भाइयों, अब उस गीत की लाल लाल होठों वाली हसीना से नजरें हटाकर जरा ये देखिए, सामने 1973 की संगीत सुड़ी के पांच और गीत खड़े हुए इशारा कर रहे हैं कि भाई हमारी भी तो सुनो।

हाँ भाई, दादा बर्मन ही की धुन थी ये। उस साल की पायदान नंबर 31 पर फिल्म थी अनुराग, मगर पायदान नंबर 30 पर फिल्म बनारसी बाबू का जो गीत था ना, बुरे भी हम, वो HMV सारेगामा के खजाने में शामिल नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं बजाएंगे, बल्कि पायदान नंबर 29 के मौसम का मजा लेंगे। बड़े मजेदार लोफर बने हुए धर्मेंद्र।

फिल्म रामपुर के लक्ष्मण का ये मधुर गीत उस साल नंबर 28 पर था और नंबर 27 पर थी दादा बर्मन की एक और धुन, मगर जरा हल्की फुल्की सी धुन। फिल्म थी ये गुलिस्तान हमारा।

0: बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में। बहनों और भाइयों, 1973 में वार्षिक गीतमाला के पायदानों के ज्यादातर गीत काफी झूमते झामते मजेदार गीत थे, तो अब अगले तीन छाओं वाले गीतों में भी वो झूम झाम थोड़ी देर तक और बरकरार रख लें। मगर हाँ, जरा प्यार से, जरा नजाकत से झूमने वाले थे ये छाव वाले गीत, जिनमें से पहले गीत में मदन मोहन की मीठी महक थी।
1: हर तरफ

0: भाई इस गीत की फिल्म का नाम तो शायद आपके दिल में बसाई हुआ होगा कसम से, मगर छाओं के अगले गीत के बारे में मुझे ये बताना होगा आपको कि इसकी संगीत निर्देशिका वो थी जो पत्नी थी उस फिल्म के डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर सावन कुमार टाक की। हाँ, सुरीली उषा खन्ना के शौहर थे ना सावन कुमार। खैर साहब, मेरी तो आदत ही थी कि दोस्तों से छेड़छाड़ किया करता था मैं, और इसीलिए मैंने एक बार उषा खन्ना पर फिल्मी मुकदमा भी चलवा दिया था जिसमें उन पर पहला इल्जाम ये लगा।
1: मुलजमा उषा खन्ना पर पहला इल्जाम ये है कि ये शास्त्रीय संगीत की ABC भी नहीं जानती और फिर भी अपने को संगीतकार समझती हैं।
2: अब बताइए मुलजिमा उषा खन्ना, बिना ABC जाने कोई आदमी पूरी किताब कैसे लिख सकता है?
3: वकील साहब, क्या आप जानते हैं कि संगीत कई प्रकार का होता है, यानी शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, अपने संगीत के अलावा विदेशी संगीत भी है। अब आप ही बताइए, इन सब तरह के संगीत को मिलाकर अगर मैं कुछ बनाऊँ तो वो क्या बन जाएगा?
2: बड़ी अच्छी खिचड़ी बन जाएगी।
3: खिचड़ी? अरे वकील साहब, खिचड़ी नहीं, इसको कहेंगे सरल संगीत।
2: ओ,
3: सरल संगीत ही तो फिल्म संगीत है, और यही संगीत ही तो मेरा जीवन है। मैं इसे गाती हूँ, सोचती हूँ, बनाती हूँ।
0: भाई इतना अच्छा जवाब उषा खन्ना ने दे दिया उस चार्ज का, तो अब उनकी एक मजेदार धुन भी तो आनी चाहिए ना उस साल की छाव से। तो सुनिए, बोल भी सावन कुमार ही के थे और फिल्म थी

बड़े मधुर मगर जरा कुछ कम सुने हुए छाओं के गीत को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। संगीतकार फिर मदन मोहन और फिल्म एक मुट्ठी।

ऐसी धारणा है कि मृत्यु के बाद मनुष्य स्वर्ग या नरक में जाता है अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए। लेकिन सत्य यह है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है। प्रत्येक मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी उसे इस जीवन में इस धरती पर ही भोगना पड़ता है।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।